जुना जुना के भो आँखा खोल न मेच जुना जुना आँखा खोल न जुना आँखा खोल न